0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a
0: number.
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनु सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: ARI Films and Salman Iqbal present Love These Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love These Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

जी आनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक्टर दे फिल्म मेकर फरहान अख्तर है जेडे अजकल काफी ज्यादा सुर्खियां विच है। फरहान अख्तर दी डॉन 3 काफी ज्यादा सुर्खियां विच है। डॉन 3 तो अचानक बाहर होने तो बाद ना रणवीर सिंह होर ज्यादा सुर्खियां दे विच आ गए क्योंकि वह हमेशा ही सुर्खियां च रहिंदे ने पर उन्होंने इस बार सुर्खियां मुश्किलां करके है क्योंकि मुश्किलां वधदियां दिख रही ने। हाल ही विच फैडरेशन ऑफ वैसटर्न इंडिया इंपलॉयज ने उन्होंने खिलाफ नॉन कारपोरेशन डायरेक्टिव जारी किया है। मतलब के फेडरेशन दे डायरेक्टर्स कैमरामैन अते क्रू मैंबर्स हुण रणवीर सिंह दे नाल काम नहीं करनगे। इस वड्डे विवाद विच कारण हुण उन्हां दीआं ओह फिल्मां दी चर्चा तेज हो गई है जिन्हां नूं रणवीर सिंह ने रिजेक्ट कर दिता है। उन्हां बारे दस्सदी आं एक एक करके पर पहला सुनो एक गीत।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003
1: इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ।
2: ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
3: ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਆਣਾ, ਅਸਲੀ ਦੇਸੀ ਘੀ ਮੇ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਗਾ ਤੁਮੇ।
2: ਕਹਾਂ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸਲੀ ਦੇਸੀ ਘੀ ਮਿਲਤੇ ਕਹਾਂ ਹੈ।
3: ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਮੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਿਫਾਈਨਡ ਪੀਵਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਮਿਲਤੇ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇ ਹੀ ਬਣਤੇ ਹੈ 100% ਪੀਵਾ ਕ੍ਰੀਮ ਸੇ, 99.9% ਪੀਵਾ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਸੇ, ਔਰ ਤੋ ਔਰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਮੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮੇ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जा फिर जिस किसी संस्था जा विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नु दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
6: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
7: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT, यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव Under the Stars, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgn और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: प्रिया, next month मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
11: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
10: अच्छा, वो क्या?
11: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
10: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
11: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

आप सब, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हो आप? कैसा फील कर रहे हो? ठंडक बढ़ रही है तो क्या आपको मजा आ रहा है ये ठंडक बढ़ते हुए देखकर? क्योंकि कुछ लोगों को ठंड पसंद होती है, कुछ लोगों को गर्मी पसंद होती है, कुछ लोगों को दोनों ही नहीं पसंद होती, स्प्रिंग और ऑटम पसंद होता है। मुझे बताइए आप कौन से उन लोगों में से जिनको ठंड बहुत ज्यादा पसंद है, उनको ठंड से रिलेटेड बाकी सारी की सारी चीजें भी बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे खाने की चीज, राइट? समर्स में मैंगो सीजन आता है, तो गर्मियों में सर्दियों में आता है मक्की दी रोटी, तो सरसों दा साग दा सीजन। सो ऑफकोर्स वो सारी चीजों का मजा आप लेने वाले हो। और मैं तो कहती हूँ कि जब भी आप ये सब करो तो मुझे इन्वाइट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको तो पता है ये निव्या भुक्कड़ है और भुक्कड़ों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको पता ही है, हमेशा की तरह एक ऐसे रिचुअल के साथ शुरुआत करेंगे जो हमें प्रिपेयर करता है, हमें हेल्दी रखता है मेंटली, फिजिकली, और सबसे अच्छी चीज हमें काम बनाता है, फोकस बनाता है, स्ट्रेस मुक्त बनाता है। मैं कहती हूँ अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे तब भी ये ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सो डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोग कहते होंगे कि इतना अच्छा क्या फील हो जाता है, वेल ट्राई कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब आप लंबी गहरी सांसें लेते हो ना, तो आप किसी कितने भी गुस्से में हो, आपका गुस्सा भी शांत हो जाता है, मतलब आप ध्यान से सोच पाते हो। सो सोचने समझने की जो शक्ति है वो आपको डीप ब्रेथ एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से देती है, प्लस आपको ऐसे ही अच्छा फील करवाती है। सो ट्राई इट एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा। और इसी के साथ अब जरा शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ जिसका नाम है द हुकअप सॉन्ग। नाउ आई डोंट से एंड आई एम नॉट सेइंग दैट हुकअप्स आर गुड और नॉट, बट यहाँ पर हम हुकअप गाना जो है वो प्ले करने वाले, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

भाई कुछ भी करना पर किसी की लत मत लगाना, क्योंकि एडिक्शन किसी भी चीज की बुरी होती है, फिर चाहे वो गड़बड़ चीजों की या गड़बड़ लोगों की। सो एडिक्शन से दूर रहिए, आई मीन लत से दूर रहिए। और आइए जरा अब बात करते हैं किस चीज की, ऑफ कोर्स मौसम की। भाई सबसे पहले अगर मौसम की जानकारी नहीं ली, आपको नहीं दी, तो बात नहीं बनेगी। हमारे प्रोग्राम कैसे बनेंगे, हम सारी की सारी प्लानिंग कैसे करेंगे? तो आइए सबसे पहले मौसम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर आज रहा और वहीं 21.9 डिग्री सेल्सियस के करीब है अभी, बट आपको फील हो रहा है 16.7 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, आपने सही सुना, 16.7 डिग्री सेल्सियस। अभी तक का सबसे ठंडा दिन है ये, जो अभी तक का विंटर जो है वो शुरू हुआ है। और अगर रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे। नो चांसेस ऑफ बारिश, बट एयर क्वालिटी है एकदम फेयर, एक्सीलेंट नहीं है बट फेयर जरूर है। जी हाँ, यहाँ पर अगर कल की बात की जाए, आज की बात हमने कर ली है, अब जरा कल की बात करते हैं, तो फ्राइडे को 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है और उसके साथ ही पूरी तरह सनी रहेगी सिचुएशन। लेकिन वो सनी रहने के बाद भी ठंड आपको फील होने वाली है। सो जितना सोक इन कर सकते हैं सूरज की किरणों को कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा अच्छे से इस ठंड से निपटने में। जी हाँ, सैटरडे की बात करें तो अगेन सनी रहेगा और 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, लेकिन फिर से संडे को बारिश शुरू होगी और फिर मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन बारिश देख पा रही हूँ। कितनी बारिश होगी उसमें थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बारिश जरूर मुझे दिख रही है, खासकर संडे से इसकी शुरुआत हो सकती है। तो सैटरडे को आप सारे की सारी चीजें कर सकते हो जो कि बाहर की आउटिंग्स के प्लान है, और बाकी संडे को देखिएगा, क्योंकि बारिश में अंदर रहने में ही ज्यादा मजा है, खासकर ठंड की बारिश। गर्मी की बारिश डिफरेंट होती है, ठंड की बारिश जो है उसमें ठंड लगती है, तो अंदर रहिएगा। इसी के साथ ये है मौसम का हाल जो कि अगले 2-3 दिन रहने वाला है। अगले 2-3 दिन तो आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत बारिश की, बट उसके बाद जरूरत है। इसी के साथ यहाँ पर एक और बहुत ही बढ़िया सा गाना आप सबके लिए।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब किस चीज का वक्त हो गया है? वेल ऑफ कोर्स आपकी फरमाइशों को आप हम तक कैसे पहुंचा सकते हो, उसी चीज का। कैसे? ऑफ कोर्स आपको एक नंबर डायल करना है और नंबर डायल करने से पहले आपको अपना फोन उठाना है। जी हाँ, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर है +9182888717 01। जी हाँ, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, +9182888717 01। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश, वो अजीज, वो फेवरेट गाने और चार चांद लगा दीजिए हमारे इस प्रोग्राम में, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, सबसे खूबसूरत है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आप चाहते हैं किसी को कोई गाना डेडिकेट करना तो आप वो भी कर सकते हैं। सो जल्दी से आ जाइए, और जब तक आप ये सब कर रहे हैं थोड़ा सा च्युइंगम चबा लिया जाए, थोड़ा बबल गम और च्युइंगम चबाने की पूरी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि यहां पर वही आपको चबाना पड़ेगा। और मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ, किसको च्युइंगम चबाना पसंद है?

जी हाँ दोस्तों, कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और मैंने कुछ पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे लिसनर्स के साथ शेयर करना है। मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ पढ़ा, उसमें मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिसनर्स कहाँ है। मुझे तब ही बताने का मन कर रहा था, पर ऑफ कोर्स मुझे प्रोग्राम तक का इंतजार करना था और प्रोग्राम शुरू हो गया है और प्रोग्राम चल रहा है, तो अब मैं आपको बता सकती हूँ। सो वहां पर लिखा हुआ था कि इंस्टाग्राम शरीफ है, मैसेज डिलीट करो तो भी सामने वालों को चुगली नहीं करता, और व्हाट्सएप तो तौबा तौबा, बिल्कुल मोहल्ले वाली आंटी है। अब आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं आपको जरा इसका कॉन्टेक्स्ट समझा दूं। यहाँ पर बोलने की कोशिश की गई है कि इंस्टाग्राम जो है वो बहुत ही शरीफ है, और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेजेस यूज करते हैं, तो आपको पता होगा कि कभी आप गलत मैसेज सेंड कर दो तो आप उसे अनसेंड कर सकते हो इजिली, और वो सामने वाले को बताएगा भी नहीं, शो भी नहीं होगा कि आपने कोई मैसेज भेजा था भी या नहीं। जी हाँ, लेकिन व्हाट्सएप के साथ ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप में अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है और अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हो, तो सामने वाला यानी कि व्हाट्सएप पे बड़ा बड़ा लिखा आता है, दिस मैसेज हैज बीन डिलीटेड। बड़ा बड़ा, जी हाँ, बोल्ड लेटर्स में लिखा आता है, दिस मैसेज हैज बीन डिलीटेड। एंड दैट्स व्हाई इंस्टाग्राम की तारीफ हो रही है, व्हाट्सएप की बुराई हो रही है, कि इंस्टाग्राम जो है वो शरीफ है, मैसेज डिलीट भी कर दो तो भी सामने वाले को चुगली नहीं करता है। लेकिन व्हाट्सएप तो तौबा तौबा, बिल्कुल मोहल्ले वाली आंटी है जो सब कुछ बक देता है। जी हाँ, आप लोग क्या कहोगे, बात में दम है, राइट? एंड आई वाज लाइक या दैट्स ट्रू, बट ठीक है, व्हाट्सएप बेशक मोहल्ले वाली आंटी हो चुगली करने वाली, लेकिन व्हाट्सएप में आपकी चैट सिक्योर है, इंस्टाग्राम पे अब नहीं है। सो कुछ भी सेंसिटिव अगर आपको किसी को भेजना है, प्राइवेट भेजना है, तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम का बिल्कुल ना करें, क्योंकि इंस्टाग्राम ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज चेंज कर दी है फ्रॉम 8th of May। अब सब कुछ जो है वो प्राइवेट नहीं है, इंस्टाग्राम उसे देख सकता है, उसे पढ़ सकता है, और वक्त आने पर एडवर्टाइजर्स को उन चैट्स को एक्सेस भी दे सकता है, लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा नहीं है, सिर्फ इंस्टाग्राम में ऐसा। सुनते हैं इसको अब, गाना एक और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेज, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही विचित्र लड़की के बारे में। जी हाँ, वो विचित्र क्यों है? इसलिए क्योंकि उनकी जो एबिलिटीज है उन्होंने सबको पार कर दिया, सबको क्रॉस कर दिया है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ 14-year-old अधारा पेरिस सेंकेज। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, क्योंकि ये जो सरनेम है मुझे लग रहा है मैं इसको गड़बड़ प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट द थिंग इज की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है और वो आप तक पहुंच गई है। सो अधारा जो है उनके बारे में ये बात हो रही है। 14 साल की उम्र में ये अपनी मास्टर डिग्री ले रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, मास्टर डिग्री, मतलब अपना हाई स्कूल पूरा कर चुकी हैं, अपनी बैचलर डिग्री ले चुकी हैं, अब अपनी मास्टर्स को कंप्लीट करने वाली हैं। जी हाँ, बनने का सपना है एस्ट्रोनॉट, मार्स पर जाना चाहती हैं, नासा के थ्रू जाना चाहती हैं। और आपको एक और चीज बता दें कि इनका जो आईक्यू है वो ज्यादा है अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा। जी हाँ, इनका आईक्यू है 162। आपको बता दें कि 162 अगर इनका है तो स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टीन का कितना था? वेल, वो मेजर किया था 160 के करीब, 160, बट इनका है, अधारा का है 162 एंड शी इज जस्ट 14 राइट नाउ। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि सपने जो हैं वो स्पेस में ट्रेवल करने हैं, सपने जो हैं वो एस्ट्रोनॉट बनने के हैं, सपने जो हैं वो स्पेस के लिए काम करने के हैं। जी हाँ, लेकिन एक चीज जो ये भी बताती है कि कैसे ये जर्नी उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी, ऐसा कहा जाता है कि ये ऑटिज्म है अधारा को, और इस वजह से उनको सालों तक बुली किया गया और फिर उसके बाद जब इनकी एकेडमिक एबिलिटीज जो है वो शाइन करने लगी तो लोगों ने इनके आगे नतमस्तक होना सही समझा. अब होना ही पड़ेगा. आई मीन जब तक कोई बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज ना दिखाए हम हमेशा किसी को छोटा ही समझते रहते हैं. और ऑटिज्म इज नॉट समथिंग जो कि खुद कोई कंट्रोल करता है, लेकिन समवन कैन लिटरली बुली समवन ऑटिज्म की वजह से. लेकिन एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग या बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है उनको उनका दिमाग इतना ज्यादा शार्प होता है, इतना ज्यादा शार्प होता है कि हम नॉर्मल लोग या नॉर्मल बच्चे कंपीट भी नहीं कर सकते वहां पे. जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि लिटरली 5 साल की उम्र में उन्होंने अपना एलिमेंट्री स्कूल खत्म कर लिया था, बैचलर डिग्री उन्होंने 11 तक अर्न कर ली थी और अब 14 में वो मास्टर डिग्री कंप्लीट करने वाली है. 162 IQ, क्या बात है. यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी दोस्तों, और अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं, तो जरा ध्यान से अपनी सीट को पकड़ कर बैठ जाइए, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि व्हाट वर यू डूइंग, हमारी पूरी जिंदगी हम क्या कर रहे थे। सो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि मॉस्किटो रिपेलेंट कैन एक्चुअली अट्रैक्ट मॉस्किटोज। जी हाँ, आपने सही सुना। आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा ये कौन सी बात हो गई, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। मॉस्किटोज रिपेलेंट तो दूर रखने के लिए होता है ना, मतलब मच्छरों को दूर रखने के लिए हम मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं, वो कैसे अट्रैक्ट कर सकता है मॉस्किटोज को। वेल, ये न्यू रिसर्च सजेस्ट करती है कि मॉस्किटोज कैन एक्चुअली अट्रैक्टेड टू बग स्प्रे इफ दे एसोसिएट विद फीडिंग। जी हाँ, अब ध्यान से सुनिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। सिमिलर टू हाउ पैवलोव्स डॉग्स लर्न टू एसोसिएट द रिंगिंग ऑफ बेल विद फूड। सो जो डॉग्स होते हैं कुछ, उनको जब भी घंटी बजाई जाती है तो उनको लगता है कि ओके खाने का टाइम हो गया है। So, जब भी घंटी बजती है उनको लगता है कि खाने का टाइम हो गया, फिर चाहे घंटी उनके खाने के लिए बजी भी ना हो। वैसे ही मॉस्किटो उसके साथ भी ऐसा होता है। जी हाँ, उनको लगता है कि जो प्रेजेंस ऑफ डीट है, ऑल्सो नोन एज बग स्प्रे, इट कैन इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड मील। मतलब अगर किसी ने मॉस्किटो रिपेलेंट लगाया है तो मच्छर को ये ध्यान में आ जाएगा कि ये तो तभी लगता है जब कोई इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब यहाँ पे खून मिलने वाला है, यहाँ पे तो खाना मिलने वाला है। मतलब जिस दिशा से वो मॉस्किटो रिपेलेंट की खुशबू आ रही है उस दिशा में तो जरूर जाना है, क्योंकि वहीं पर खाना मिलेगा। अब खाने ने तो अपने आप को बचाने के लिए वो लगाया था, उसे क्या पता कि अब उसकी वजह से उसका खाना जो है वो बनने वाला है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा मतलब हमें क्या बता दिया तुमने, हम बचपन से क्या करते आ रहे हैं। वेल, आप क्या, मैं भी बचपन से वही करती आ रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जब मॉस्किटो रिपेलेंट लगाया तो अब मच्छर मुझसे दूर रहने वाले हैं, बट टर्न्स आउट वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। एंड टर्न्स आउट मेरा तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मतलब वो तो यूनिवर्सल डोनर है इंसानों के लिए भी और मच्छरों के लिए भी। मच्छर भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से। आई डोंट नो वाई बट डेफिनेटली आई एम नॉट गोना यूज बग रिपेलेंट या मॉस्किटो रिपेलेंट फ्रॉम नाउ on, I'm gonna, you know, find something else, ताकि मच्छरों को ये ना लगे कि खाना उसी दिशा में, क्योंकि फिर तो वो डबल स्पीड से मेरी तरफ आएंगे। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा ये क्या ही बता दिया। वेल, आपको जो बताया मैं उतनी आश्चर्यचकित खुद भी हूँ, सो डोंट वरी। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: And you are listening to Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. And you are listening to Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan. And you are listening to Radio Briswani.
5: Hi, this is Deepika Padukone. And you are listening to Radio Briswani.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, I'm Tulsi Kumar. And you are listening to Radio Briswani.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
9: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
10: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
9: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
10: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
9: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
11: Priya, next month mama ka birthday. Soch rahi ho, unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge. Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
12: Acha? Wo kya?
11: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
12: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
11: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
13: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों, इसी के साथ बॉलीवुड को मिलने वाली है अपनी पहली एलियन मूवी. आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, एलियन मूवी मिल चुकी थी बहुत पहले, कोई मिल गया हमें जादू याद नहीं है तुम्हें. वेल, वैसे वाली एलियन नहीं, लेकिन दूसरी वाली एलियन. और उसको पक्का करने के लिए, उसे परफेक्ट बनाने के लिए हॉलीवुड से द एलियन और मिशन इम्पॉसिबल के हॉलीवुड क्रू को भी मंगवाया गया है. जी हाँ, सो अगेन, ये क्या है और ये क्यों हो रहा है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं. सो बॉलीवुड को मिलने वाली है अपनी पहली ऑफिशियल एलियन, और मतलब वो जो बड़े पैमाने की जो फ्रेंचाइजी होती है वो. इसमें आपको अक्षय कुमार जो है वो मिलने वाले हैं, क्योंकि अक्षय कुमार ने ऑलरेडी जो है ऑफिशियली जो है वो कन्फर्म कर दिया है कि वो सामुक में एंटर होने वाले हैं, सामुक यूनिवर्स. जी हाँ, एंड वॉट इज सामुक यूनिवर्स? वेल, सामुक इज द मूवी, द फ्रेंचाइजी जिसमें आप ये सब देख पाओगे. ये इंडिया की फर्स्ट लार्ज स्केल एलियन थ्रिलर है. जी हाँ, ये कोई बहुत ही प्यारी सी हैप्पी गो लकी टाइप की एलियन मूवी नहीं है, जैसे कि कोई मिल गया था या वो वाली सिचुएशन. नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ थ्रिलर मूवी, या लार्ज स्केल एलियन थ्रिलर. जी हाँ, इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है विपुल अमृथला के शाह के द्वारा. जी हाँ, विपुल अमृथलाल शाह के द्वारा. और इसे डायरेक्ट करने वाले हैं कनिष्क वर्मा. और आपको ये भी बता दें कि ये हैवी प्रैक्टिकल इफेक्ट ड्रिवन प्रोजेक्ट प्रॉमिस करता है एक सिनेमेटिक एक्सपीरियंस अनलाइक एनीथिंग सीन बिफोर in बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा. जी हाँ, सो अगेन, जैसे मैंने आपको बताया है कि फिल्म जो है वो आपके लिए लेकर आ रही है हॉलीवुड लेजेंड्स को फ्रॉम द एलियन एंड मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी टू हैंडल रियलिस्टिक प्रैक्टिकल क्रीचर इफेक्ट्स एंड हैवी एक्शन. सो जो वो आपको हैवी एक्शन मिलने वाला है और वो जो प्रैक्टिकल जो है वो क्रीचर इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, वो सब आपको मिलेंगे बहुत ही अच्छे से. मतलब वो कोई नौसिखिया नहीं बना रहा है, बल्कि वही लोग बना रहे हैं जो इसे अच्छे से करना जानते हैं. सो अगेन, आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर इट. वी स्टिल डोंट नो कि ये मूवी कब जो है वो सिनेमाज में आएगी, लेकिन इतना जरूर पता है कि हम लोग एक्साइटेड हैं. नाउ लेट्स सी कि अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को बुला के भी क्या ये जादू कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ है ब्रह्मास्त्र के लिए भी बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र स्टोरी वाइज तो बेकार थी. राइट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा. और क्या आप भी एक्साइटेड हो, एंड आर यू ऑल्सो इन टू एलियन मूवीज और थ्रिलर मूवीज, यू नो द एलियन कवर्नेंट और वैसी जो मूवीज हैं उनमें आपका भी इंटरेस्ट रहता है, जरूर मुझे बताइएगा. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: जी दोस्तों, अरसे के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। क्या चल रहा है खबरों की दुनिया में? वॉर फ्रंट पे, क्योंकि वॉर फ्रंट पे बहुत कुछ चल रहा है। फिर से ये लड़ाई एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है। कुवैत पे हमला हुआ है और एक एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। जी हाँ, और उसमें ईरान कह रहा है कि हमने हमला किया, लेकिन इसके जिम्मेदार यूएस है, क्योंकि यूएस की मिसाइल जो है वो हमारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। सो आपको अगर दोष देना है किसी को तो अमेरिका को दें। जी हाँ, यहां पर बहुत कुछ चल रहा है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे? ऑफ कोर्स इजराइल और लेबनान से। इजराइल और लेबनान के बीच इस शर्त के साथ हुआ युद्ध विराम। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि इजराइल और लेबनान ने सीज फायर लागू करने पर सहमति जताई है। हालांकि इसके लिए एक शर्त यह है कि हिजबुल्ला को अपने हमले पूरी तरह रोकने होंगे। ये सहमति तब बनी जब बुधवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 9 लोग मारे गए और हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर रॉकेट हमले किए। अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान में कहा कि सभी देशों ने इस बात की पुष्टि की है कि इसराइल और लेबनान के बीच संबंधों का भविष्य दोनों संप्रभु सरकारों को ही तय करना चाहिए। उन्होंने किसी भी देश या नॉन स्टेट एक्टर की ओर से लेबनान के भविष्य को बंधक बनाने के किसी भी प्रयास को खारिज किया। यह समझौता इस शर्त पर भी आधारित है कि दक्षिण लेबनान में इसराइल के नियंत्रण वाले उस क्षेत्र से हिजबुल्ला के सभी लड़ाकों को हटा दिया जाए या इलाका लिटानी नदी से लेकर सीमा तक फैला हुआ है, जिसे समझौते में साउथ लिटानी सेक्टर कहा गया है। मार्च के अंत में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा था कि आईडीएफ दक्षिण लेबनान के एक बड़े इलाके में एक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करेगा और जब तक उत्तरी इजराइल सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक विस्थापित हुए हजारों निवासियों को वहां वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सीज फायर समझौता सोमवार को हुए एक आंशिक सीज फायर सहमति के बाद आया है। लेबनान ने कहा था कि सहमति के तहत इजराइल बैरूत पर बमबारी नहीं करेगा, जिसके बदले में हिजबुल्ला इजराइल पर हमला भी नहीं करेगा।
1: दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: कहां की अदा भी।
1: बड़ा बेशरम है तू तो लिखा है बड़ा ये कमर
0: छुपा ले।

0: जी दोस्तों, वही भारत में इजराइल के राजदूत ने ईरान पर हमले के बारे में क्या कहा। भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने आरोप लगाया है कि ईरान बहुत ही बुरे इरादे के साथ बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार बनाने की होड़ में लगा हुआ था। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि हम कई सालों से कूटनीति, राजनीतिक और आर्थिक दबाव के जरिए ईरानी शासन को अपना रवैया बदलने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम उन्हें सैन्य तरीकों से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने शुरू में ही कह दिया था कि हमारा ईरान पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने असल में बिना किसी वजह से अपने पड़ोसियों पर हमला किया। मुझे लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने इस बातचीत में दावा किया कि ईरानी शासन इस सारी बयानबाजी के बावजूद कि वो युद्ध में विजयी हुआ है, वो असल में एक बहुत ही कमजोर स्थिति में है। रुवेन अजार ने पहलगाम हमले की तुलना 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए हमले से भी की।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा से भी कुछ खबर है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों से ये की है अपील। जी हाँ, और हम बात कर रहे हैं भारत की। भारत में बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा चल रही है, लेकिन भीड़ जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। समाचार एजेंसी AANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे बरसात का मौसम भी आने वाला है, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। और जोशी मठ को वन वे भी किया गया है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, इससे हमारे पास एक आंकड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि जो लोग बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं वो अपने ठहरने की व्यवस्था पहले से करके आए, ताकि बाद में होने वाली तकलीफ से बचा जा सके। उन्होंने कहा यात्रियों को थोड़ा कष्ट जरूर होगा क्योंकि भीड़ ज्यादा है और कतारें लंबी लग रही हैं, दर्शन करने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दोनों ही तीर्थ स्थलों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। समाचार एजेंसी AANIA के मुताबिक अब तक 1,000,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम की यात्रा की है, जबकि 8.25 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी किए हैं।

जी दोस्तों, अरसे के साथ ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी संसद ने दिया बड़ा झटका। पता नहीं मुझे क्यों लगता है, लेकिन इस इंसान को झटकों की जरूरत है। आई एम नॉट गोना से कि अच्छी बात है कहने वाली, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर कर दिया गया है हमें। जी हाँ, सो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक प्रस्ताव पास किया है। यह प्रस्ताव 208 के मुकाबले 215 वोटों से पास हुआ। ऐसा तब संभव हुआ जब 4 रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया। अमेरिकी संसद में युद्ध को लेकर असहमति का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन कभी कभार ही देखने को मिलता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने इसी साल फरवरी में युद्ध शुरू किया था। यह चौथी बार है जब हाउस ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप ने इन शक्तियों के लिए संसद की मंजूरी नहीं ली थी। हाउस के इस प्रस्ताव को अभी भी रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली अमेरिकी सेनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है। भले ही यह प्रस्ताव सेनेट में पास हो जाए, लेकिन इस बात की संभावना कम ही है कि यह ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह से रोक पाएगा। ट्रंप इस प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसे रद्द करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। सेनेट ने मई में भी इसी तरह का एक प्रस्ताव आगे बढ़ाया था। 7 पिछली नाकाम कोशिशों के बाद यह प्रस्ताव आगे बढ़ा था, लेकिन अभी भी इस पर पूरे सदन में वोटिंग नहीं हुई है। अब इन पर रोक लगाई नहीं जा रही है। ये बेलगाम घोड़े की तरह ये इंसान भागा ही जा रहा है, और भाग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन भाग भी नहीं रहा है ना। यहीं आकर, यहीं रहकर, यहीं खड़ा होकर हमें परेशान कर रहा है। जी हाँ, मतलब कुवैत में लिटरली एक इंसान की डेथ हो गई। जी हाँ, जो हमला किया गया था ईरान की तरफ से, एंड गेस व्हाट, देयर आर पीपल जो कि कह रहे हैं अरे नहीं नहीं, ये हमला तो ईरान ने नहीं, इजराइल ने किया है। क्यों? क्योंकि इजराइल चाहता ही नहीं है युद्ध खत्म हो। चलिए, ट्रंप जो है वो लगे हुए हैं अपने कारनामे को करने के लिए, बहुत बिजी है। अपने बेटे की शादी में भी नहीं गए। जी हाँ, आप लोगों ने कहा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ट्रंप के बड़े बेटे की शादी होने वाली है, लेकिन वो शादी हो भी गई और ट्रंप उसमें नहीं गए। ट्रंप ने अपने बड़े बेटे की शादी की टाइमिंग को कहा था, ओके यू नो व्हाट, द टाइमिंग इज रॉन्ग फॉर दिस वेडिंग। तो ट्रंप का बेटा सोच रहा होगा, अरे बापू, हमें थोड़ी पता था कि तुम युद्ध शुरू कर दोगे ईरान के साथ। हमें पता होता तो हम आगे पीछे रख लेते शादी, तुम बताओ तो सही। और मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि ट्रंप किसी से कुछ डिस्कस करते ही नहीं है। I mean, उनके बेटे ने शादी कर ली, उनकी दूसरी बेटी टिफनी ट्रंप मजे से ताजमहल और राजस्थान घूम रही है। शी बी लाइक, ओके यू नो व्हाट, माय डैड इज बट आई एम गोना डू व्हाट आई एम गोना डू एंड आई एम गोना एंजॉय माय लाइफ। वो अपने हस्बैंड के साथ पूरा रोमांटिक गेटअवे में बिजी है, एंड शी इज लाइक ओके लेट्स जस्ट डू इट, क्योंकि ये इंसान पता नहीं कब दुनिया को खत्म करने पे आ जाए। है तो मेरे पिता है, लेकिन है तो I mean, खिसका हुआ ना। सो ऑफकोर्स टिफनी भी लाइक, इससे पहले मैं सारी अच्छी अच्छी जगहों पर घूम आती हूँ और इंडिया इंक्लूडेड है उसमें। एंड क्या कहा जाए, ट्रंप का बच्चा होने में भी अलग ही स्वैग नजर आता होगा। स्वैग नहीं, बल्कि मतलब मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं होती होगी। सच में मैं सोच सकती हूँ कि ट्रंप से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो कैसा फील करते होंगे। इनफैक्ट ट्रंप की सबसे बड़ी ग्रैंड डॉटर ने अभी कुछ वक्त पहले ये शेयर भी किया था कि कैसे जब लोगों को ये पता चलता है कि वो ट्रंप की ग्रैंड डॉटर है, वो उन्हें ऐसी साइड आई देती हैं, ऐसे साइड आई देते हैं उसे कि वो लिटरली, अगर इफ लुक्स कुड किल, इफ आईज कुड किल, तो सच में वो अभी तक कितनी बार छन्नी हो गई होती है। हाँ, ये ट्रंप की ग्रैंड डॉटर का कहना है, अरे भाई तुमने भी कुछ बहुत बड़े पुण्य किए होंगे। I mean, अमीर खानदान में पैदा हुई है, लेकिन अमीर खानदानों में भी ट्रंप खानदान चूज करना, बेवड़ों का खानदान

महसूस करना। जी हाँ, यही है ट्रंप की सच्चाई। बट मुझे अच्छा लगता है कि ट्रंप के दो बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, खासकर बड़ा बेटा और एक बेटी, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इंसान बस करता रहता है, जो करता रहता है, हमको कोई लेना देने नहीं, हम तो अपने मजे करेंगे और बाकी पूरी दुनिया को भी करने चाहिए। पर क्या उनका पिता उन्हें अलाउ कर रहा है बाकी दुनिया को मजा करने के लिए? जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन मटाके का है, आई मीन नैन मटाके का है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
6: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
5: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
6: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
7: बिजली का बिल देख कर
8: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
9: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों अभी कल की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर एक बड़ी ही जबरदस्त चीज लिखी हुई थी और मुझे ऐसा लगा कि ये कितनी सेंस बना रही है। सो वहां पर लिखा हुआ था कि ऑल एडल्ट नीड्स एटलीस्ट 3 months ऑफ समर हॉलीडेज, ताकि उस हॉलीडेज में वो कुछ भी ना करे, वो सिर्फ मजे करे, वो अपनी जॉब्स वॉब सब जो है वो रोक दें उन 2 से 3 महीनों के लिए और वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बाहर जाकर खेल पाए। कितना अच्छा हो जाता है राइट, अगर ये सब हो पाता तो कितना अच्छा हो जाता है। एंड आई वाज लाइक या आई नो। एंड फिर कहीं मैंने एक और चीज पढ़ ली, वहां पे लिखा हुआ था आई नीड एनी सॉर्ट ऑफ केशन, स्टेकेशन, वेकेशन और एनी सॉर्ट ऑफ केशन, बिकॉज केशन इज व्हाट आई वांट राइट नाउ. सो कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप भी बहुत ज्यादा काम करके थक जाते हो, आपको लगता है कि नहीं बस अब मुझसे और नहीं होगा, अब मुझे छुट्टी पे जाने की जरूरत है, अब मुझे वेकेशन पे जाने की जरूरत है या स्टेकेशन पे जाने की जरूरत है. वेल या, लेकिन मुझे समर हॉलीडेज वाला जो सीन है ना वो सच में होना चाहिए, सच में होना चाहिए. सो ऑल एडल्ट नीड्स अ समर वेकेशन, लाइक जस्ट लेट्स जस्ट क्लोज ऑल आर जॉब्स फॉर 3 months एंड प्ले आउटसाइड प्लीज. आई एम सो टायर्ड, या आई एम सो टायर्ड. बट आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा तुम तो हमें लगता है छुट्टी मनाकर आई हो अभी थोड़े दिन पहले. अरे नहीं, वो तो थोड़ी बहुत छुट्टी होती है ना, लंबी छुट्टी कि अपने फायदे हैं. बट ऑल द मेरे वाले केस में वो डिफरेंट है, लेकिन जितने भी मेरे कॉरपोरेट मजदूर हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ. एंड आई वॉज लाइक या आई नो यू आर राइट. सो डेफिनेटली वी नीड एनी सॉर्ट ऑफ केशन. एंड इसी के साथ यहाँ पर अब जरा आपके लिए एक गाना प्ले करने वाले हैं हम, जो कि है एक डेडिकेटेड सॉन्ग जो कि हम डेडिकेट करने वाले हैं किसके लिए, ऑफकोर्स द बर्थडे बॉय के लिए. और हमारे बहुत ही खास लिसनर क्रिस जी का है आज जन्मदिन, तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू. जी हाँ, और हम यही दुआ करेंगे आपके लिए कि आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा हो, आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, अच्छी और अच्छी हेल्थ जो है वो बनी रहे, आपको वेल्थ जो है वो आती रहे. आई मीन वेल्थ किसको पसंद नहीं है राइट, पैसे आते रहे तो उससे ज्यादा अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती. और उसी के साथ आप हैप्पी हैप्पी रहो इस पूरा साल, घूमते फिरते रहो और मजे करते रहो जैसे कि आप हमेशा करते रहते हो. एंड थैंक यू सो मच हमेशा हमारे इस प्रोग्राम को सुनने के लिए. सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. और ये गाना आपके लिए जो कि अगेन एक पार्टी सॉन्ग है और आज आपका जन्मदिन है तो हमने सोचा कि यही गाना आपके लिए प्ले किया जाए. थैंक यू सो मच. ये रहा आपका ये गाना.
10: बोतला तो लड़ दो, दारू शारू तो लड़ दो, मिस

जी हाँ दोस्तों, आपने लोगों को बैप्टाइज होते हुए देखा होगा, चीजों को बैप्टाइज होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक पूरी एयरलाइन को बैप्टाइज होते हुए देखा है? नहीं देखा, राइट? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये नजारा आपको दिख सकता है अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे ब्राजील की फुटबॉल टीम की फ्लाइट एंड बैप्टाइजेशन जो वहां पर हो रहा है. उसको बैप्टाइज करने की जो कोशिश हो रही है वो बहुत ही ज्यादा फनी है. सो मोमेंट जो है ये वही है जब ब्राजील की नेशनल टीम जो है उसने प्लेन को बोर्ड किया और जब वो वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी और जब वो फ्लाइट में सब चढ़ गए, सब फ्लाइट में जो है वो सवार हो गए, तो एकदम से दोनों तरफ से पूरी की पूरी फ्लाइट को बैप्टाइज करने का प्रोसेस शुरू हो गया. जी हाँ, सो अगेन यहाँ पर यही कहने की कोशिश मैं करूंगी कि कितने लोग पसंद करते हैं. इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट फॉर देम. ब्राजील के लोगों के लिए फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, वो एक लिटरली फीलिंग है, वो इमोशन है और वो कल्चर है. जी हाँ, उनके लिए वो कल्चर है. सो वर्ल्ड कप की हाईलाइट जो मुझे नहीं पता कि अभी क्या होने वाली है, लेकिन यहां पे इतनी तो मैं कह सकती हूं कि बैप्टाइजेशन ऑफ फ्लाइट हैज ऑलरेडी बिकम अ हाईलाइट. जी हां, मैं आपको बता दूं कि instead of being treated like just another flight, the aircraft became part of the journey itself. जी हाँ, ये symbolize करता है hope and belief को for millions of fans. जो ब्राजील में फुटबॉल का emotion है, जो ब्राजील के लोग फुटबॉल के लिए feel करते हैं, वो कुछ अलग है. And that is the reason कि वो पूरी तरह से पूरी कोशिशें करने के लिए तैयार थे कि okay, हम चाहते हैं हमारी टीम जो है वो जीत कराए, किसी तरह की बुरी नजर, किसी भी तरह की negativity जो है इसको छू भी ना पाए. तो उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी फ्लाइट को ही baptize कर दिया. जी हाँ, तो आप मुझे बताइए क्या आप ऐसा सब कर सकते हो, मतलब क्या आप भी ऐसे बिलीव रखते हो जैसे कि यहां पर ब्राजील के लोगों ने रखे हुए हैं, और क्या आपको लगता है कि सच में ये सब करने से असर होता है? वेल, आई एम नॉट गोना से कि असर नहीं होता, कि होता है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स किसी के बिलीफ की बात है. लेकिन मैं यहां पे इतना जरूर कहूंगी कि क्या आप अग्री करेंगे कि हमें किसी खेल को इतना ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, खेल को खेल की तरह नहीं बल्कि लिटरली उसको लिटरली इतना ज्यादा अपने सर पर सवार होने देना चाहिए कि हम ऐसी ऐसी चीजें भी करना शुरू कर दें? आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा ऐसी बात नहीं है, क्रिकेट के लिए भी तो लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं और बड़े बड़े हवन करवाते हैं. सो ऑफ कोर्स बैप्टाइज अगर वो कर रहे हैं ब्राजील के लोग अपनी फ्लाइट को, स्पोर्ट्स टीम की, फुटबॉल टीम की फ्लाइट को, तो इसमें बुराई क्या है? वेल, बात तो सही है, पूरी तरह से सही है, और मुझे लगता है कि ये इमोशन की बात है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर बताइएगा. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट में एंटर करने का, और वो फेवरेट सेगमेंट क्या है? वेल ऑफ कोर्स उसका नाम है ओल्ड इज गोल्ड, मतलब पुराने गाने, पुराने किस्से, वो सितारे जो बहुत ही हसीन है, वो फीलिंग्स जो बहुत ही ज्यादा प्योर है, या उन्हीं चीजों के बारे में बात और उन्हीं बातों का जिक्र। जी हाँ, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से अपने पुराने गानों की फरमाइश लेकर आ जाइए, क्योंकि वही जो शर्त है वो तो वही है, शर्त वही है कि आप लोगों को पुराने गाने ही फरमाइश करने हैं अब, क्योंकि ये ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ पुराने गानों के लिए डेडिकेटेड है। सो आ जाइए जल्दी से, और जो सबसे पहले गाना मैं प्ले करने वाली हूँ इस सेगमेंट में वो बहुत ही खूबसूरत है, और वो जन्म जन्म के रिश्ते के बारे में है। जी कहीं ना कहीं आपने गेस कर लिया होगा मैं कौन से गाने के बारे में बात कर रही हूँ, बट रफ़ी साहब का ये गाना आप सब के लिए और शुरुआत के लिए, इससे परफेक्ट और क्या हो सकता है, राइट?

बात करते हैं कि जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा बात करते हैं कि एटीट्यूड होना चाहिए हमेशा गो गेटर जैसा. मतलब अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको हिम्मत करके उसे पाने की कोशिश तो डेफिनेटली करनी चाहिए. जी हाँ, और अगर आप टिमिड रहते हो, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये चीज़ हमें कैसे मिलेगी, मतलब हम इसे कैसे, मतलब जो एम्बिशन है वो पूरा कैसे करेंगे, मतलब कोशिश नहीं करते हो, तो बात नहीं बनती है. और ये चीज़ बहुत पहले प्रूव करती आई हैं, और एक बहुत ही बड़ी अभिनेत्री ने ये प्रूव भी किया था. जी हाँ, और मैं बात कर रही हूँ जीनत अमान जी की. आपको पता है सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि उनके करियर का सबसे बड़ा रोल रहा है. आई मीन और भी उन्होंने बड़े बड़े रोल्स किए हैं, बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम वॉज टोटली टोटली डिफरेंट. जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सत्यम शिवम सुंदरम के लिए पहली चॉइस हेमा मालिनी थी, लेकिन हेमा मालिनी ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने देखा कि बहुत ही बोल्ड अंदाज में उनको पेश किया जाएगा, तो वो चीज़ वो करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल रही हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव भी रही हैं. उनको हमेशा से लगता था कि उनकी फैमिली जो है वो कुछ चीज़ें अलाउ नहीं करेंगी, वो खुद भी कुछ चीज़ें अलाउ नहीं करेंगी. इसीलिए जब राज कपूर ने उन्हें वो पिक्चर नरेट की, स्टोरी नरेट की, तो उन्होंने उधर ही उसके लिए मना कर दिया. अब राज कपूर इससे पहले किसी को ढूंढते तो जीनत अमान के कान में बात आ गई कहीं से, और उनको किसी से सुनने को मिला कि सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, रूपा के कैरेक्टर के लिए, राज कपूर किसी को ढूंढ रहे हैं. जी हाँ, फिर क्या था, जीनत अमान ने सोच लिया कि ये कैरेक्टर तो मुझे प्ले करना ही करना है, और कहीं से उन्हें पता चलता है और वो स्टोरी पढ़ती हैं, और उसके बाद तो उनका दिल आ जाता है उस रूपा के कैरेक्टर पे. अब आप सबको पता है, हमें पता है कि जीनत अमान हमेशा से बहुत ही बोल्ड रही हैं, और उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए किसी बोल्ड अभिनेत्री की ही जरूरत थी. लेकिन राज कपूर को राजी करना इस चीज के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. आई एम गोना टेल यू अबाउट इट अ लिटिल मोर, बट पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक और खूबसूरत सा गाना.

जी हाँ दोस्तों, तो बता रही हूँ मैं आपको कहानी रूपा बनने की। और वो रूपा किसने बनने की कोशिश की? वेल ऑफ कोर्स जीनत अमान ने। कोशिश किसी और को बनाने की हुई, लेकिन बना कोई और। वो कहते हैं ना कि रोटी रोटी पर लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आप लोग बोलोगे कि नीवा शर्मा, कहावतों में ना तुमको मिक्सिंग और रिमिक्स करने की बड़ी आदत है। अरे यार, अरे ठीक है, हम जेंजी लोगों की दुनिया में रहते हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट जेंजी, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है। जी हाँ। सो बात हो रही है जीनत अमान की। अब जीनत अमान बताती हैं कि वो शूटिंग कर रही थी वकील बाबू के लिए राज कपूर साहब के साथ, और राज कपूर साहब उस दौरान रूपा के बारे में बहुत ज्यादा बात किया करते थे, क्योंकि वो रूपा को लेकर सत्यम शिवम सुंदरम बनाना चाहते थे। पर जैसे मैंने आपको बताया कि हेमा मालिनी वॉज द फर्स्ट चॉइस, बट ऑफकोर्स शी सेड नो। सो उसके बाद जो है वो तलाश रहे थे अपनी रूपा को। लेकिन यहाँ पे जीनत अमान वो जब सुनती थी, जब वो उनके साथ काम कर रही थी क्योंकि वो उनकी पिक्चर में हीरो थे, तो वो सुनती रहती थी रूपा के बारे में। और फिर सुनते सुनते उनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ गया इस कैरेक्टर में। फिर क्या था उसके बाद उन्होंने ठान ली कि मैं तो डेफिनेटली इनके साथ काम करूंगी। और उन्होंने कहा, जीनत अमान जी ने कहा भी था कि उनकी इच्छा थी राज कपूर के साथ काम करने की एज अ डायरेक्टर, मतलब राज कपूर उनको डायरेक्ट करे, एंड दैट वॉज इट। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने सच में खुद से ऐसा काम किया। लाइक गो गेटर वाला जो एटीट्यूड था जीनत अमान जी का, वो उस वक्त भी बहुत ज्यादा लाजवाब था। आज भी हम कहते हैं लड़कियों को, इफ यू वांट समथिंग गो गेट इट, यू नो, गो गेटर वाला एटीट्यूड। और जीनत अमान ने बिल्कुल वैसा ही किया। जीनत अमान अपने सेट से शूटिंग खत्म करके वो गई, और उन्होंने जब वो जा रही थी तो आरके स्टूडियो जो है वो उनके रास्ते में आता था, तो वो उन्होंने कपड़े पहने, उन्होंने विजुअलाइज किया रूपा के कैरेक्टर को जैसा उन्हें ठीक लगा, और उसके बाद वो गई आरके स्टूडियो में और उन्होंने राज कपूर के असिस्टेंट को कहा कि जॉन, कह दो सर से कि रूपा आई है। जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि जीनत आई है, बट उन्होंने कहा कि रूपा आई है। और उसके बाद क्या था? उसके बाद राज कपूर ने जब सुना कि रूपा आई है, इसका क्या मतलब है, चलिए ठीक है, उन्होंने अंदर बुलाया। और उसके बाद जब उन्होंने देखा तो वो मान गए कि या रूपा का कैरेक्टर तुम ही प्ले करोगी। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, आई होप आपने हमारे आज के इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी किया है और आपको लग रहा है कि कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप अपनी फीडबैक हमें जरूर भेज सकते हैं, क्योंकि आपकी फीडबैक से हम और अच्छे से इम्प्रूव करते हैं और अच्छा शो आपके लिए लेते हैं, लेकर आते हैं, प्रोग्राम लेकर आते हैं आपके लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने एंजॉय तो पक्का किया होगा, मतलब इतना तो मैं कह सकती हूँ, राइट? मतलब मैं इतना तो अपने लिसनर्स को जानती हूँ। जी हाँ, सो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, यानी कि फ्राइडे को। और फ्राइडे को क्या होता है? वेल, होने दे नान मटक्का। नान मटक्का होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन मस्ती का माहौल पक्का होगा। मस्ती होगी, मजेदार गाने होंगे, मजेदार किस्से होंगे, मजेदार बातें होंगी, और ये सारी चीजों का मिलन होगा हमारे इस प्रोग्राम इवनिंग वाइब में। सो फ्राइडे तो हमेशा स्पेशल रहते ही है, मतलब फ्राइडे को स्पेशल अगर मैं ना भी बनाऊ ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों का मूड वैसे ही अच्छा होगा। फ्राइडे है भाई, फ्राइडे को इतना जबरदस्त मूड होता है कि अगर सामने वाला गलती भी कर दे तो आप उसको माफ कर देते हो, लेकिन अगर वही गलती कोई मंडे को करे और गलती ना ही करे तो उसकी जो सजा आप देते हो किसी को मंडे ट्यूसडे को, वो अलग बात है। सो फ्राइडे है, मजे करेंगे, फन करेंगे, बहुत सारी गपशप करेंगे। और आज के लिए आप हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा सिर्फ आज के लिए ही हेल्दी रहना है क्या? अरे मतलब मेरे कहने का मतलब यही था कि हेल्दी हमेशा रहिए, पर मजे कीजिए, अच्छा सा खाना खाइए और शाम को एंजॉय कीजिए। आई नो ठंड बढ़ रही है, सो अपने आप को कोजी कोजी करके रखिए, लेयर्स पहनना मत भूलिए, अपनी लेयरिंग करना बिल्कुल मत भूलिए। दैट्स अबाउट इट, एंजॉय कीजिए। और ये रहा आपके लिए ये लास्ट सॉन्ग हमारी तरफ से, जो कि अगेन एक बहुत ही लेजेंडरी गाना है। दिस इज माय फेवरेट फेवरेट सॉन्ग, द मोस्ट फेवरेट वाली जो लिस्ट है उसमें से, और ना सिर्फ मेरा बल्कि बहुत सारे और भी लिसनर्स का और लोगों का। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस गाने को बहुत पसंद नहीं करते हैं, और ये गाना है आपकी नजरों ने समझा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: अनु।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निविया शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन के कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन पोर्ट पर युद्ध पोत ब्रिस्बेन का ओपन डे। ब्रिस्बेन के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। नौसेना के 125 साल पूरे होने के मौके पर युद्ध पोत HMAS ब्रिस्बेन ने आम जनता के लिए अपने दरवाजे खोले। टाउन हॉल के सामने परेड हुई और सैकड़ों स्थानीय लोग, खासकर बच्चे, इस विशाल युद्ध पोत को देखने और नौसेना के हथियारों को करीब से जानने के लिए पोर्ट पर पहुंचे। वहीं ब्रिस्बेन एयरपोर्ट और एयर कनाडा की पार्टनरशिप के 10 साल पूरे। ब्रिस्बेन एयरपोर्ट और एयर कनाडा के बीच मजबूत रिश्ते के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर एयरलाइंस ने यात्रियों को इकोनॉमी और बिजनेस क्लास की फ्लाइट्स पर 10% का स्पेशल डिस्काउंट देने की घोषणा की है। वहीं ब्रिस्बेन मैराथन 2026 की तैयारियां तेज। EVA एयर ब्रिस्बेन मैराथन 2026 का आयोजन संडे यानी कि 7 जून को होने जा रहा है। इस बड़े इवेंट को देखते हुए ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने आज से ही शहर के कई रूटों पर ट्रैफिक और पार्किंग की पाबंदियां लगा दी हैं, जो 9 जून तक जारी रहेंगी। इसके साथ वॉल्टर टेलर ब्रिज दोबारा खुला। ब्रिस्बेन के दैनिक यात्रियों यानी कि कम्यूटर्स के लिए राहत की खबर है। मरम्मत के काम की वजह से बंद पड़े ऐतिहासिक वॉल्टर टेलर ब्रिज को पूरी तरह से दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। वहीं क्वींसलैंड कारवा और कैंपिंग शो की शुरुआत। बोवेन हिल्स के ब्रिस्बेन शो ग्राउंड्स में बहुप्रशिक्षित क्वींसलैंड कारवा एंड कैंपिंग शो की शुरुआत हो गई है। ये शो 9 जून तक चलेगा। इस इवेंट की वजह से शो ग्राउंड्स के आसपास की सड़कों पर गाड़ियों की भारी आवाजाही देखी जा रही है। इसी के साथ ब्रिस्बेन में मच्छरों से निपटने के लिए हवाई छिड़काव शुरू। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने स्थानीय इलाकों में मच्छरों के लावे को खत्म करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए एरियल ट्रीटमेंट शुरू किया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले पीएम मोदी का गुजरात दौरा और 18,800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी कल यानी 5 जून को गुजरात के सूरत और दमन के दौरे पर रहने वाले हैं। आज दिल्ली में इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। वहीं अहमदाबाद में शुरू हुआ पहला वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। आज अहमदाबाद में पहले वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली इस इवेंट में हिस्सा भी लिया। वहीं भारत ओमान ट्रेड एग्रीमेंट हुआ लागू। भारत और ओमान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पूरी तरह लागू हो गया है। इसी के साथ बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी के लिए यूनेस्को और एनसीईआरटी की बड़ी पहल। बदलते डिजिटल दौर में बच्चों को इंटरनेट पर सुरक्षित रखने के लिए यूनेस्को और एनसीईआरटी ने मिलकर एक नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। वहीं उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। देश के उत्तरी राज्यों में गर्मी में लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई इलाकों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेज़न के जंगलों की कटाई में रिकॉर्ड गिरावट, पर्यावरण के मोर्चे पर दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हाल ही में आई एक सैटेलाइट रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न के वर्षा वनों की कटाई की रफ्तार साल 2019 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। वहीं ग्लोबल मार्केट में यूरो करेंसी का दबदबा बढ़ा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की 25वीं सालाना रिपोर्ट में सामने आया है कि दुनिया भर में चल रहे भू राजनीतिक तनावों के बीच यूरो एक बेहद सुरक्षित करेंसी के रूप में उभरी है। वहीं ग्लोबल फूड सिस्टम पर मंडराया सुपर अलनीनो का खतरा। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस साल आने वाला सुपर अलनीनो दुनिया भर के फूड सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के साथ मौसम बदलने से दुनिया भर में बढ़े सांप काटने के मामले। ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते तापमान की वजह से जंगलों के जीव अब इंसानी बस्तियों की तरफ रुख कर रहे हैं। द गार्जियन की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक तापमान बढ़ने के कारण दुनिया भर में सांपों के इंसानों से टकराने और सांप काटने के मामलों में तेजी आई है। वहीं चीन के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। चीन के प्रमुख अनाज और चावल उत्पादक प्रांतों में इस साल समय से पहले ही भारी बारिश शुरू हो गई है। वहीं डेनमार्क में नए प्रधानमंत्री ने संभाली कमान। डेनमार्क में राजनीतिक बदलाव के बाद मेटे फ्रेडरिकसेन ने आधिकारिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया है। वहीं अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले विराट कोहली अफगानिस्तान वनडे सीरीज से बाहर। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए थोड़ी निराशाजनक खबर है। टेस्ट और वनडे से संन्यास ले चुके विराट कोहली चोट की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले आगामी वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं फ्रेंच ओपन में बड़ा उलटफेर, आर्याना सांबालेका हुई बाहर। टेनिस कोर्ट से बहुत ही बड़ी खबर है। 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन आर्याना सांबालेका फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गई हैं। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दिखेगा हॉकी जैसा रोमांच। इस साल होने वाले फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में एक अनोखा बदलाव देखने को मिल सकता है। कड़ाके की गर्मी को देखते हुए मैचों के दौरान हाइड्रेशन ब्रेक्स दिए जाएंगे। इसी के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप बनाम डिज्नी और टेलर स्विफ्ट की जंग। एक नई और दिलचस्प स्टडी में सामने आया है कि इस साल होने जा रहे फीफा वर्ल्ड कप का मुकाबला अब सिर्फ दूसरे खेलों से नहीं है। आज के डिजिटल दौर में फुटबॉल को लोगों की स्क्रीन टाइम के लिए डिज्नी, टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट्स और नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी रचेंगे इतिहास। फुटबॉल के दो सबसे बड़े लेजेंड्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी इस साल अपने करियर का रिकॉर्ड 6वां वर्ल्ड कप खेलने उतरेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701।
1: लीजिए परमानंद से एक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ब्रिस्बेन के सतबीर सिंह के पिता जनरल सिंह के निधन रविवार 31 मई को माटा प्राइवेट हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार शनिवार 6 जून को 11 बजे से माउंट थॉमसन मेमोरियल गार्डन्स क्रेमेटोरियम 329 नेसरी रोड पोलैंड पार्क में किया जाएगा। स्ट्रोक बैक करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप सतबीर सिंह जी को 0430-419-454 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
4: 0400-234-235.
5: Get ready, Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
6: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर।
7: आर यू रेडी टू स्टॉप रेंटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओनिंग वन, और मे बी एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brisbane. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
8: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन।
9: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन।
10: Hi, this is Salman Khan.
11: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन।
12: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन।
13: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
14: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
15: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
16: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio.
17: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
18: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
17: अच्छा, वो क्या?
18: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
17: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा?
18: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
17: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
19: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
17: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
19: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 Soccer Tournament presented by Queensland Fiji Football Association. Due to the rainy weather, QBOG का Sunday 31st में गेम postpone हो गया है। अब गेम्स होंगे Thursday 4th June से Sunday 7th June तक और finals Sunday 14th June को होगा at Acacia Ridge Soccer Club, 174 Mortimer Road, Acacia Ridge 4110. Ground पे चलेगा full soccer का टशन, opens, masters and legends. हर मैच में energy, excitement और crowd का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

যদি তুমি লেট হয়ে ভেবেই যাবে। তোমারই মে যা লগতা রুম মে রে গিয়ে।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या mela carnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just
4: Are you
3: number,
4: ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brisbane. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: I. So the museum.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो, कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया ना, हर कोई इस गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दियां गलियां दी धुन प्रस्तुत कीती है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया ते निशांत नागर ने इसनू तैयार कीता है। ये गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला राग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुनियो, पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुना दिंदी हां। गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

0: is Amitabh Bachchan.
1: And you are listening to Radio Briswani.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. And you are listening to Radio Briswani.
3: Hi, this is Salman Khan. And you are listening to Radio Briswani.
4: Hi, this is Deepika Padukone. And you are listening to Radio Briswani.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, I'm Tulsi Kumar. And you are listening to Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan. And you are listening to Radio Briswani.
9: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
10: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
9: अच्छा, वो क्या?
10: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
9: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
10: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 एम ते जी आर जे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। देखो बनारस की तवायफ गौहर जान का प्यार हुण इसकी गल करनी तो बनती बनती है। देखो जे गल करिए ना, उन्हां नाल कोई गलबात नहीं हुई पर उन्हां ते लट्टू सी। कौन ओ जिन्हां दी गौहर जान दी गल चल रही हैगी है ते जिस इंसान नूं मिले सी, मैं पहला दस्या सी ना नाम नाम सी असलम ते लट्टू सी ते उन्हां दी गहरे प्यार करन लगी सी। एक दिन ना बहुत डूंघा प्यार, एक दिन ओ गायब हो गए। पुछताछ करन ते उन्हां नूं पता चलिया कि ओ मिर्जापुर काम करन गए हैगे ने, इसलिए गाने विच उन्हां दा जिक्र हैगा। दिल्ली स्थित भोजपुरी संगीत अते साहित दे विशेषज्ञ जिहड़े माहिर हैगे ने निराला विदेसिया, ओह कहिंदे ने कि बहुत बाद विच उन्हां नूं पता लग्या कि अंग्रेजां ने उन्हां नूं रंगून भिजवा दिता। इस गाने विच अगे दी लाइन इसे ते हैगी है, इस नाल पता चलदा है कि ओह अपने प्रेमी दे लई किस हद तक जान नूं तैयार सी।
1: डायमंड

0: सारी साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: कूड़ेदान में अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नूं छू जाण वाली अते रूह नूं हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनूं सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नूं तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love These Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love These Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
6: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुँचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just an
4: बिजली का बिल देख कर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फिजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फिजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT, यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।
3: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा

मिस्टर को मैं चाहता हूं। तुम्हारे खाते में सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brizbani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: जल्दी चलो, जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट।
0: ओके तुम्हारी, मैं जाऊं। लगता है रूम में रह गए।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: अनु।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

जीवन अमूल्य है। इस जीवन में हमें जो कुछ मिला है वो सब अमूल्य है, और वो सब हमें प्राप्त हुआ है उस ऊपर वाले की कृपा और उसकी रहमत से। उसी रहमत को धन्यवाद देने के लिए, उसका शुक्रिया कहने के लिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देने के लिए अपने जीवन आधार के सफर में आज हम और आप फिर से एक साथ आ गए हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आज एक बार फिर से। और जीवन एक ऐसा भंवर है जिसे पार करने के लिए एक बेस की, एक आधार की बहुत जरूरत है, और वो हमें मिलता है तब जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, अपने ईश्वर को प्राप्त करना शुरू करते हैं और उसकी ओर बढ़ना शुरू करते हैं, हम मनुष्यता को प्राप्त करते हैं। आइए आज ऐसे ही एक सफर पे फिर से अपने जीवन के आधार को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में, रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए मेरे साथ।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 पर और आपके साथ इस सफर में सताक्षी है। धैर्य यानी कि पेशेंस सीखा कई बार है लेकिन समझ हम और आप नहीं पाते हैं। लेकिन धैर्य जो इंसान रखता है, जो इंसान पेशेंस रखता है, वही इंसान जीवन में तरक्की कर पाता है, वही इंसान जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाता है, पा पाता है जो वो पा सकता है, और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आप भी अपने मन मुताबिक चीजें पाना चाहते हैं तो धैर्य रखिए। आज बेशक आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर धैर्य और मेहनत आप रखेंगे, यानी कर्म अपने अच्छे रखेंगे और पेशेंस रखेंगे, ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे, तो निश्चित तौर से आज ना सही लेकिन आप जीवन में वो सब हासिल कर पाएंगे जो असल में आप डिजर्व करते हैं और आप पाना चाहते हैं। आइए इसी बात पर एक और गीत को यहाँ पर सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सुबह के कुछ अमूल्य विचार जीवन आधार में इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। और इन विचारों में आपके साथ सताक्षी भी अपने कुछ विचार घोल रही है और इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही है। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए मेरे साथ।

डर जाते हैं जब लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अक्सर हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि अब कैसे ही हम इस जीवन में आगे बढ़ेंगे या हम कैसे कुछ भी जिंदगी में कर पाएंगे। तो देखिए, जिंदगी में घबराइए नहीं, डरिए नहीं, क्योंकि आपके साथ वो खड़ा है जो इस दुनिया में सबसे बड़ा है। याद है ना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हो गए थे और अपनी पूरी सेना को भी कौरवों को दे दिया था, उसके बाद भी जीत पांडवों की हुई। इसलिए जब आपके साथ वो ऊपर वाला खड़ा है तो फिर डर भय किस बात का है। आप जीवन में सही कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और बाकी सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। आइए इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं जीवन के आधार को, यानी कुछ ऐसी बातों को जो आपकी सुबह को भी खास बना रही हैं और सुबह में ऐसा रस घोल रही हैं जो मिठास का रस है, प्रभु भक्ति का रस है, ईश्वर की प्राप्ति का रस है और उस ऊपर वाले पर विश्वास का रस है। इसी रस के साथ, इसी भक्ति रस के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

अक्सर लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि उनकी हर बात पर आप रिएक्ट करें, श्रोताओं हर बात पर आप बोलें। अक्सर लोग आपको उकसाते भी बहुत हैं, बहुत परेशान करते हैं कि आप बोलें कोई बात हो और फिर लोगों के आगे तमाशा बने। लेकिन ऐसी जगह पर मौन धारण कर लेना, मौन हो जाना, शांत हो जाना, इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। लोगों के तीखे शब्द, तीखे बाण आपको लगते जरूर हैं, लेकिन बस इतनी बात समझने की जरूरत है कि वो आपको इसलिए उकसा रहे हैं ताकि आप पलटकर वार करें, आप अपने शब्दों का वार करें और फिर वो मौन हो जाएं और आप चिल्लाते रहें और वो उसका मजा लें। इसलिए ईश्वर पर कहते हैं ना, कभी कभी चीजें छोड़ देनी चाहिए, और मौन धारण करना ऐसे लोगों के लिए खासकर सबसे बड़ा सबक होता है। आइए इसी सबक के नाम ये अगला गीत सुनते हैं, और सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

कटाक्षी के साथ जीवन को समझने की एक कोशिश आज एक नई सुबह हम और आप मिलकर कर रहे हैं फिर से जीवन आधार के खास सफर में। इसी सफर में आगे बढ़ेंगे अभी एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए कटाक्षी के साथ।

चुंबक लोहे प्रीति है लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। रेडियो प्रसानी 1701 एम पर जीवन आधार के सफर में श्रोतागण आप हैं सताक्षी के साथ। चुंबक को देखा है ना, मैग्नेट आयरन से उसकी अजब सी मोहब्बत है, ऐसे चिपकता है उससे कि लोहे को भी उठा लेता है। इसी तरह से हमारे शब्द भी हैं। कितना ही कठोर इंसान हो, कितना ही पत्थर दिल इंसान हो, अगर आप उससे मिठास से बोलते हैं, अगर आप उससे प्यार से बोलते हैं, तो आप उसे अपना मीत बना लेते हैं। हमारे शब्दों में वो ताकत है ना कि हम किसी को जान से मार भी सकते हैं और किसी को काल के ग्रास से छुड़ा भी सकते हैं, किसी को मरने से बचा भी सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए, ताकि लोग ऐसे जुड़ जाएं जैसे लोहा मैग्नेट से जुड़ जाता है, चुंबक से जुड़ जाता है। आइए इसी बात पर, कबीरदास जी की इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

ये था आज एक और जीवन की आधार का हमारा और आपका साथ जीवन आधार, जिसमें आप सताक्षी के साथ थे। एक ऐसे ही सफर पर कल फिर से आपके साथ चलूंगी, आपके साथ कुछ अनुभव अपने साझा करूंगी और कुछ मॉर्निंग थॉट्स ऐसे आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाएंगे और ईश्वरीय शक्ति के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सफर से अब लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्ते अदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन की तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं और हमेशा आप स्माइल करते रहें। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी। जी हाँ, और आज आखिर फ्राइडे है, आ ही गया, बस वीकेंड थोड़ा सा दूर है, यानी कल सैटरडे है, फिर संडे है। जी हाँ।

ब्रेकिंग न्यूज, बॉलीवुड, बहुत सारी पुरानी यादें और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स जो देनी होती है। तो चाय तो हाथ में बनती है, यानी चाय तैयार है ना। अगर पीकर आए हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी चाय मेरे साथ भी पी लीजिए। कार का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए क्योंकि शो शुरू हो चुका है। हाँ जी, जानने का सफर। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। इस गीत के साथ सुनते रहिए, बिल्कुल एनर्जेटिक मूड के साथ रेडियो ब्रह्मवाणी।

हां जी दोस्तों, ब्रिस्बेन में ओलंपिक्स की तैयारियां तेज हो रही है। मैराथन का जो जोश है वो भी छाया हुआ है और एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए भी काफी एक्साइटिंग अपडेट्स आ रही है। यानी कि हमारे ब्रिस्बेन हर दिन कुछ ना कुछ नया कर रहा है, तो हमें पूरा पूरा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आइए इसी के साथ हम सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वैसे आप सभी के साथ शेयर किया जाए कि इस वीकेंड ब्रिस्बेन मैराथन फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसमें हजारों रनर्स हिस्सा लेने वाले हैं। जी हाँ, सिटी में स्पोर्ट्स और फिटनेस का जबरदस्त माहौल देखने को मिलेगा, यानी बहुत ही एक्साइटमेंट वाला माहौल छाया हुआ है। वहीं पर अगर हम एंटरटेनमेंट की अपडेट जाने तो पॉपुलर रियलिटी शो बिग ब्रदर ऑस्ट्रेलिया का नया सीजन ब्रिस्बेन शिफ्ट होने की खबरों में है। जी हाँ, इससे क्वींसलैंड की जो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री है उसको भी बूस्ट मिल सकता है। फिलहाल मैं आपको बूस्ट करती हूँ इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन, जाइएगा कहीं भी मत, बस अपनी वॉल्यूम को बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते रहें।

वेलकम बैक है जी। इस प्यारी प्यारी से गीत के बाद एक बार इंडिया की थोड़ी सी अपडेट जान लेते हैं। भारत में साउथ वेस्ट मॉनसून केरला पहुंच चुका है और कई राज्यों में बारिश की एक्टिविटी बढ़ने ही वाली है। वहीं अगर हम स्पोर्ट्स की दुनिया में नजर डालें तो स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्रिकेट फैंस की नजरें आने वाले इंटरनेशनल मैच और वर्ल्ड कप प्लानिंग पर टिकी हुई है। जी हाँ, तो आगे ऐसी ही अपडेट्स आप सभी को जाननी बताती रहेगी ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं अमिताभ बच्चन को शहंशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों 1988 में रिलीज हुई फिल्म शहंशाह इतनी आइकॉनिक बनी कि ये टाइटल उनकी पहचान ही बन गई, क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन ने बहुत ही मतलब कहते हैं ना आइकॉनिक रोल भी प्ले किया था और बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया था, जिससे फैंस ने और बहुत सारे लोग ने, पूरी पब्लिक ने उन्हें इतना पसंद किया कि उनका नाम ही शहंशाह रख दिया। जी हाँ, और वैसे दोस्तों याद है वो जमाना? जी हाँ, हमारा पुराना जमाना आज के जमाने से अगर हम उसको कंपेयर करें ना, तो हम सभी पुराने जमाने में जाना चाहेंगे। आज कुछ बातें हैं, जानेंगे थोड़ी देर बाद। सुनते रहिए रेडियो प्रिंस वाणी।

हाँ जी, रेडियो ब्रह्मवाणी आप सभी सुन रहे हैं। तो चलिए फिर वापस से उस जमाने में चले ही जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं मिस्ड कॉल यानी ट्रिंग ट्रिंग। जी हाँ, जब मिस्ड कॉल ही मैसेज हुआ करती थी, जब कैसेट्स रिवाइंड करने के लिए पेंसिल का यूज किया करते थे हम, राइट? याद है ना? और संडे जैसे ही आता था तो संडे की सुबह टीवी पर कार्टून्स का इंतजार पूरे हफ्ते रहता था। और आज के बच्चों को शायद यकीन भी ना हो कि पहले जमाने में कोई इंटरनेट नहीं होता था भाई, लेकिन आजकल के टाइम पर इंटरनेट इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि सभी ने उस इंटरनेट को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया है। अरे बच्चों, जागो, अगर आप मेरा शो सुन रहे हैं ना, तो अपने पेरेंट्स से एक बार पुराने जमाने की बात जरूर पूछना। आप भी पुराने जमाने की यादों को ही जीना चाहोगे आज के जमाने में। जी हाँ दोस्तों, वैसे अगर कोई मुझे पूछे ना कि मैं पुराने जमाने में जाना वापस जाऊंगी कि आज के जमाने में ही चलूंगी, वैसे तो देखिए अप टू डेट होते रहना चाहिए, लेकिन जो पुराने जमाने की यादें थी, पुराने जमाने का मजा था और मार थी ना मम्मी पापा की, वो आज भी काम आती है और याद भी आती है। और वो भाई बहनों का लड़ना, फिर आपस में लड़कर फिर से मिल जाना, एक दूसरे के बाल खींचना, वो सारी यादें, वाकई मैं तो उस यादों में जाना चाहूंगी। और अगर कोई मुझे मौका देगा ना, तो मैं इस जमाने में वो यादें जरूर जीना चाहूंगी। आप क्या जीना चाहेंगे, पुरानी या आज की दुनिया? जल्दी जल्दी से मैसेज करके जरूर बताएं। और दोस्तों, बच्चों को ये भी बताना चाहूंगी, या अगर उनके पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो उनको पुराने जमाने की बात जरूर शेयर करना। और ये कहना चाहूंगी कि पहले टाइम पे कोई इंटरनेट नहीं होता था दोस्तों, और फिर भी हम सभी बहुत खुश रहते थे विदाउट इंटरनेट। जी हाँ, तो कोशिश करें कि आज के टाइम पर भी इंटरनेट थोड़ा कम करें, फोन जरा कम करें, और अपने इंडोर आउटडोर गेम्स को वाकई खेले, अपने भाई बहनों को टाइम दे, बहुत सारा टाइम स्पेंड करे, क्योंकि ये टाइम जो है ना वापस नहीं आता। फिलहाल मुझे लग रहा है मैं काफी टाइम वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये गीत जरूर सुनाऊंगी। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, आपके अपने दोस्त चांदनी जैन के साथ। और बैठे बैठे मुझे कुछ ख्याल आया। हाँ जी, आप ही का ख्याल आया। वो ये ख्याल आया कि आपकी जिंदगी की सबसे यादगार फैमिली मेमोरी क्या है। जी हाँ, मुझे फटाफट से मैसेज कीजिए और अपनी यादों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी जानने का कहते हैं ना मौका मिले कि आपकी भी ऐसी कौन कौन सी मेमोरीज है जो आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं, जो कभी भूल नहीं सकते। जल्दी से याद करके फटाफट से मैसेज करें। तो आइए इसी के साथ सुनाते हैं आपको ये गीत ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी। तो आइए फिर थोड़ा सा फन हो जाए, क्योंकि फन भी बहुत जरूरी है। एक बार दोस्तों, एक टीचर एक स्टूडेंट से पूछती है, बेटा बताओ जरा सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है। स्टूडेंट थोड़ी देर सोचता है, फिर वो जवाब देता है, मैम मैं बताऊं। तो टीचर बोलती है, हाँ बेटा स्टैंड अप और बताइए सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है। तो वो कहता है, मैम जिसका मंडे हॉलिडे हो। मैम अपनी जगह से वापस आती है और उसे खूब पिटाई पड़ती है, लेकिन बाद में मैम भी सोचती है, कुछ गलत तो नहीं कहा था, वाकई ही अगर मंडे छुट्टी होती तो मेरा भी मजा था और बच्चों का भी मजा था। वैसे देखिए बात तो सही है, संडे के बाद मंडे सबसे ज्यादा टफ लगता है, और जब मंडे को अगर हॉलीडे हो जाए तो वाह, वैसे कोई हम लोगों का ना, हम सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। अगर मंडे हॉलीडे होनी शुरू हो जाए ना, फिर हमें ट्यूसडे बुरे लगेगा। तो आ जाइए, इसी के साथ अब दोस्तों वक्त हो चुका है आप सभी के साथ बाय बाय कहने का। और याद रखें, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर नया दिन एक नई शुरुआत जरूर देता है। उस नई शुरुआत में हमने कुछ न कुछ जरूर करना है। जी हाँ, इसी के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ इजाजत। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रसवानी। बाय बाय।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कुवैत एयरपोर्ट से टकराया ईरानी ड्रोन। कुवैत ने सर्विलांस फुटेज जारी किया है जिसमें वो पल दिखाया गया है जब एक ईरानी ड्रोन ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल पर हमला किया था। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दर्जनों घायल हो गए और कुवैत के विमानन बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा। मारा गया व्यक्ति भारतीय नागरिक बताया गया। मौत के 4 महीने बाद किया जा रहा आयतुल्ला अली खामनेई को सुपुर्दगे खाक। 21 जून को निकलेगा जनाजा। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के लगभग 4 महीने बाद उनको ईरान के मशहद शहर में इमाम रजा के मजार के पास सुपुर्दगे खाक किया जाएगा। उनकी अंतिम इच्छा थी कि शिया इस्लाम की सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक के बगल में उनको दफनाया जाए। उनके जनाजे में आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े जनसमूहों में से एक देखने को मिल सकता है। जनाजा 21 जून के आसपास निकलने की उम्मीद है। रूस के रणनीतिक उत्तरी हब तक पहुंची जंग। रूस के सबसे बड़े आर्थिक मंच के आयोजन के बीच यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग पर बड़ा ड्रोन हमला कर क्रेमलिन को एक करारा झटका दिया है। जब दुनिया भर से हजारों प्रतिनिधि इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच रहे थे, ठीक उसी समय यूक्रेनी ड्रोनों ने शहर के ऊर्जा और सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबर। ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट, केरलम में ड्रग्स के खिलाफ अभियान। केरलम सरकार ने ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट शुरू किया है। अभियान के तहत पुलिस को कॉलेज कैंपस और हॉस्टलों में छापेमारी के लिए विशेष छूट दी गई है। पहले प्रशासनिक अनुमति में लंबा वक्त लग जाता था। ड्रग नेटवर्क छात्रों को निशाना बना रहे हैं, इसलिए स्कूल, कॉलेज और छात्रावास मुख्य फोकस में है। महिलाओं के लिए ड्रेस कोड और नो म्यूजिक, केरलम में इस्लाम फ्रेंडली जिम ने छेड़ा विवाद। केरल के पलक्कड़ में एक जिम को लेकर विवाद हो गया है। एक फिटनेस सेंटर ने यह घोषणा करके सार्वजनिक बहस छेड़ दी है कि उसे इस्लाम फ्रेंडली जिम में बदला जाएगा जो शरिया आधारित दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित होगा। हालांकि इस घोषणा को अब डिलीट कर दिया गया है। इस घोषणा को सबसे पहले नवाज मुथुटी ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के जरिए शेयर किया था जिसमें बताया गया था कि ये जिम पिछले 15 सालों से चल रहा है। अपने सदस्यों के लिए नियमों का नया सेट लागू करने के लिए कुछ बदलावों से ये गुजरेगा। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

लीजिए परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ब्रिस्बेन के सतबीर सिंह के पिता जनरल सिंह के निधन रविवार 31 मई को माटा प्राइवेट हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार शनिवार 6 जून को 11 बजे से माउंट थॉमसन मेमोरियल गार्डन्स क्रेमेटोरियम 329 नेसरी रोड होलन पार्क में किया जाएगा। स्ट्रोक बैक करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप सतबीर सिंह जी को 0430-419-454 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।

आज फ्राइडे है दोस्तों, 5th of June, और बाहर क्वाइट विंडी डे है आज। थोड़ी देर में आपको फोकास्ट बताते चलेंगे। कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: तो बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सुन रहे थे और सुबह का सफर में शामिल है आप। मैं हूं आपके साथ ही नीलम, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको। 11 मिनट हो गए हैं 7 बजकर, और चलिए देखते हैं फोरकास्ट में क्या बताया गया है। ब्रिस्बेन के लिए 12 डिग्रीज अभी है और सनी कंडीशंस विल कंटिन्यू ऑल डे। अभी 12 डिग्रीज है और टॉप्स रहेगा 19। मेलबर्न के लिए 9 डिग्रीज अभी है और टॉप्स रहेंगे 15। क्लाउडी कंडीशंस एक्सपेक्टेड अराउंड 9। कैनबरा के लिए 6 डिग्रीज अभी है, मोस्टली सनी डे, टॉप्स रहेगा 14। सिडनी के लिए 12 डिग्रीज है, टॉप्स रहेगा 18। और गोल्ड कोस्ट के लिए विंडी कंडीशन, सीवियर वेदर वार्निंग बताया गया है, 12 डिग्रीज अभी है, टॉप्स रहेंगे 18। और सनशाइन कोस्ट के लिए बताया गया है 14 डिग्रीज अभी है, यहाँ पर भी सीवियर वेदर वार्निंग बताया गया है, विंडी कंडीशंस, टॉप्स आज का है 19। और ये कुछ वेदर फोरकास्ट दे रहे थे आपको दोस्तों, और चलिए आगे बढ़ते हैं।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

तुम लोग उदास रहना चाहते हो?

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

वेलकम बैक दोस्तों। और ट्रैफिक अपडेट देते हैं आपको इप्सविच मोटरवे। यहाँ पर स्टेशनरी व्हीकल हज़ार है ईस्ट बाउंड टुवर्ड्स व्हीकल। और क्वींसपोर्ट रोड साउथ मरूरी, यहाँ पर फायर हज़ार है। ऑल लेन्स आर ब्लॉक्ड बोथ डायरेक्शंस। और अपडेट्स हमें आते हैं तो हम आपको बताते चलेंगे दोस्तों। और वैसे रास्ते पर है, आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आज फ्राइडे है तो सभी बिजी रहते हैं और कहीं ना कहीं पहुंचने की सभी को जल्दी रहती है। ख्याल रखें अपना रास्ते पर। सेफ ट्रेवल्स।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: दोस्तों, सुबह का सफर में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ज्ञान अगर कर्म में नहीं उतरे तो वो शून्य है। तो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट। अगर समझ लो, अगर आप कहीं पर जाते हो, वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हो लाइफ के बारे में और ढेर सारा ज्ञान मिलता है, कोई पढ़ाई करते हो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आप बहुत अच्छा सीखते हो, और नौकरी के अलावा अगर आप लाइफ में उसे यूज़ नहीं करते, या फिर कुछ सीखा है आपने एज इन अबाउट लाइफ, किस तरह से जीते हैं, या फिर जन सेवा एज इन पीपल की मदद करना, ये सब आप कहीं भी आप जाते हो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे ही बातें बताता है कि किस तरह से अपने लाइफ को जिया जाता है, या फिर किस तरह से किसी की लुक आफ्टर करते हैं, या फिर ऑल द गुड थिंग्स, राइट? आप सीखते हो और डो पर वहीं पर छोड़ कर आ जाते हो, इसके कोई फायदा नहीं है। और तो जो सीखते हो उसको अपने डेली लाइफ में, अपने काम में, अपने कर्म में बहुत ज़रूरी है दोस्तों उतारना। एंड अदरवाइज जो आपने सीखा है, इट्स लाइक इक्वल टू ज़ीरो। सो थिंक अबाउट इट और चलिए एंजॉय करते हैं।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: दोस्तों, इट्स 7:36 और समय हुआ कि हम आपको विश करें। अगर आज आपका जन्मदिन है तो कहना चाहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको, और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे दोस्तों। और एनिवर्सरीज अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू और बेस्ट विशेज आपके लिए और ढेर सारा प्यार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
4: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

सब बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे. फिल्म दस्तक से इस गीत को हमने लिया और आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में. वैसे कभी कभी ऐसा टाइम होता है हम कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन में रहते हैं जहां पर रियलाइज बाद में होता है कि क्या कर रहे हैं एंड उस टाइम पर पैनिक मोड में रहते हैं. यू नो अभी समझ लो कि कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन आपके घर पे कोई कोलैप्स हो गया है या कोई अटैक हो रहा है, गोइंग थ्रू वायलेंस और समथिंग. तो आप अगर जब फोन लगाते हैं इमरजेंसी सर्विसेज को तो ये बताया गया है, इट्स इसको कह सर्वाइवल टिप है सॉर्ट ऑफ, कि आप अपना जो लोकेशन है वो पहले बताएं. बहुत जरूरी है बिकॉज जैसे ही आप अपना लोकेशन बताते हैं दे स्टार्ट ट्रेसिंग यू. एंड इन केस ये क्यों बताया पहले, क्योंकि इन केस द कॉल गेट्स डिसकनेक्टेड तो कोई भी टाइम पर आप इमरजेंसी सर्विसेज को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ये याद रखें कि आप ये पहले बताएं कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं एंड देन यू कैन गो ऑन. जस्ट अ सर्वाइवल टिप. और फिर दूसरा वाला एक सर्वाइवल टिप हमारे पास हाथ लगा है वो कुछ ऐसा जाता है कि अगर घर के अंदर कोई ब्रेक इन करता है आपके, ओब्वियसली आप घर के अंदर हैं, एंड टर्निंग ऑफ द लाइट्स कैन समटाइम्स गिव यू एन एडवांटेज बिकॉज आप जानते हैं कि आपका घर का लेआउट कैसा है. जो इंट्रूडर है उसको नहीं पता, तो आप जानते हो कि यू नो कि आपका घर का लेआउट जस्ट अ लिटिल टाइम फॉर यू टू मेक अ प्लान. सो अब ऐसा है कि दिस इज जस्ट यू नो अ टिप, अ सर्वाइवल टिप टू थिंक अबाउट इट. एंड लेकिन अगर आपके घर के अंदर कोई इंट्रूडर आता है, ब्रेक इन करता है, तो अगर उसके हाथ में कोई वेपन हो तो एकदम ढीठ ना बन जाए जाकर लड़ाई नहीं करने लगे. स्पेशली अगर आप कुछ जानते नहीं हो उसके बारे में, यू डोंट नो हाउ टू फाइट, तो यू नो बहुत ज़रूरी है कि यू नो यू जस्ट बी स्मार्ट अबाउट इट. और या इफ़ यू आर कॉलिंग इमरजेंसी सर्विसेज एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये जस्ट टू थिंग्स टू थिंक अबाउट दोस्तों. और चलिए आगे बढ़ते हैं. आज फ्राइडे है दोस्तों, तो शायद घर पर रहने वाले हैं आज या फिर ऑलरेडी काम के लिए निकल गए हैं, रास्ते पर है, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग. और घर पर है, चिल कर रहे हैं और खूबसूरत सी सुबह का को एंजॉय कर रहे हैं. तो थैंक यू हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं एंड आई एम ग्लैड यू हैविंग अ फन डे. एंड प्लान्स बना रहे हैं दिन के लिए कि क्या दिन में करना है, शायद बाहर जा रहे हैं, लंच डेट शायद बनाया है, कॉफ़ी फू विथ फ्रेंड्स. तो जो भी आप कर रहे हैं दोस्तों, मेक श्योर यू हैविंग फन टुडे. और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे.

दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं 8:01 का सफर बाकी है। आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान, और मैं हूं आपके साथ ही नीलम। ब्रिस्बेन में 13 डिग्रीज अभी है दोस्तों, और चलिए आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों, फिल्म किशन कन्हैया से इस गीत को हमने लिया और चलिए आगे बढ़ते हैं। और ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल रन्स फ्री कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन क्लिनिक अक्रॉस वेरियस सबर्ब्स, तो आप चेक कर सकते हैं अपने एमपी के ऑफिस में जाकर कि कहाँ पर हो रहा है। वैसे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ये ऑफर करते हैं वैक्सीनेशन अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नो अपॉइंटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बट जब यू मस्ट अराइव एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर इट्स क्लोजिंग टाइम। और काउंसिल ऑपरेट्स एट अ वीकली और फोर्टनाइटली इंटरवल्स इन 14 सबर्ब्स, सबर्बन हब्स अक्रॉस ब्रिस्बेन। सम ऑफ द रेगुलर वीकली लोकेशंस इंक्लूड करीना, ये करीना लाइब्रेरी में हो रहा है, चमसाइड में चमसाइड लाइब्रेरी, कोरिंडा सेंट जोसेफ्स हॉल, इंद्रपली लाइब्रेरी में, माउंट ओमनी लाइब्रेरी में। और मुझे पता है कि माउंट ओमनी लाइब्रेरी में इस वीक है, दिस वीक में है। एंड नंदा एक्टिविटी सेंटर, अपर माउंट ग्रेविट, गार्डन सिटी लाइब्रेरी। एंड आप चेक कर सकते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम्स क्या है और क्या लेकर आना चाहिए आपको, अपने मेडिकेयर कार्ड। अगर बच्चों का इम्यूनाइजेशन आप कर रहे हैं तो दिस इज़ अ फ्लू इम्यूनाइजेशन, तो उनका हेल्थ रिकॉर्ड आप ले जाए, और एनी प्रायर अगर इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री हुआ है तो वो भी आप ले जा सकते हैं, एक्चुअली ले जाना चाहिए आई गेस। और रूटीन वैक्सीनेशन प्रोवाइडेड होता है, टू इट इज़ फ्री टू एनी वन एलिजिबल फॉर मेडिकेयर कार्ड and includes infants, children, adolescent, adults requiring standard immunization. तो आप कैचअप कर सकते हैं इसमें, और इन्फॉर्मेशन आप health.gov.au नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शेड्यूल आप जाकर चेक कर सकते हैं इसके बारे में दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत से गीत लाए हैं आपके लिए।

तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, और आगे बढ़ते हैं। वैसे आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, एंड आई डिडंट से इट बिफोर, बट या सो टुडे इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वैसे ये June 5th वॉज चोजन एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बिकॉज आज के दिन इट वॉज द ओपनिंग डे ऑफ द लैंडमार्क 1972 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम स्वीडन। तो दोस्तों, इस साल जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसका जो जो थीम है, इट्स बेस्ड ऑन नाउ फॉर क्लाइमेट एंड द स्लोगन इंस्पायर्ड बाय नेचर। तो फोकस दो एलिमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं इस साल, द अर्थ सिग्नल Acknowledging the urgent warning signs the planet is giving us, such as rising temperatures, wildfires, disappearing glaciers, and humanity's response. A call to individuals, communities, and governments to accelerate the green transition, reduce carbon emissions, and implement nature-based solutions. So, World Environment Day, aap kis tarah mana rahe hain? Maybe you're planting a tree, a plant, jo bhi kar rahe hain aap, maybe it's in favor of the earth. और वैसे द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यहाँ सेंटेनरी डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट एक्शन ग्रुप की ओर से यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है, वोल्स्टन रोड वेकल में, जहाँ पर 7 AM से शुरू होगा ऑन संडे दे सेलिब्रेटिंग, एंड बर्ड वॉक रहेगा, वाइल्ड लाइफ शो रहेगा, जंपिंग कासल रहेगा। और नियर बाय आप रह रहे हो तो आप जरूर जाइएगा, एंड यू कैन एन्जॉय। बच्चों को भी अच्छा फन एक्टिविटीज़ करने को है यहाँ पर, गाइडेड बर्ड वॉक है, इसके लिए बुकिंग रिक्वायर्ड है, तो आप चेक कर सकते हैं। और जंपिंग कासल्स भी रहेगा, वाटर बग एक्टिविटीज़ रहेंगे, एनवायरमेंटल स्टॉल्स रहेंगे, और फ्री कॉफ़ी एंड क्रोसॉन्स रहेगा, तो बोनस है, तो आप जा सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: वेलकम बैक दोस्तों, और हमारे पास एक ट्रैफिक अपडेट है। सेंटेनरी मोटरवे जिमरी हाइट्स, यहाँ पर स्टेशनरी व्हीकल हैजार्ड है। लेन और लेन्स आर रिड्यूस्ड नॉर्थ बाउंड टुवर्ड्स सिनेमन पार्क। हेल स्ट्रीट पेडिंगटन में मल्टी व्हीकल क्रैश हुआ था और वन लेन वॉज ब्लॉक, बट नाउ इट्स ऑल क्लियर्ड। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैसे कहते हैं जीवन में कुछ भी एक तरफा नहीं चलता है, अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो आपको देना भी आना चाहिए, फिर चाहे वो प्रेम हो, पैसा हो या आदर सम्मान। Yeah, I know, right? This is so delicious. I know. And चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर अपने लाइफ में इसको उतारिएगा, इसके बारे में सोचिएगा। एंजॉय करते हैं ये गीत।

वेलकम बैक दोस्तों. और जस्ट लिटिल टिप ऑन, अगर आप ट्रेवल करते हो इंटरनेशनल या डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाते हो बेसिकली, और जहां पर चेकिंग होता है और आपको अपने बेल्ट उतारने पड़ते हैं, कोट्स पहने हुए हैं, आपने जैकेट पहने हुए हैं, लैपटॉप निकालने होते हैं, तो कहते हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स आर वन ऑफ द इजिएस्ट प्लेसेस टू लूज योर फोन और हैव समवन क्विकली ग्रैब इट व्हाइल यू आर डिस्ट्रैक्टेड रिमूविंग शूज, बैग्स, लैपटॉप्स और गोइंग थ्रू एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग. तो जो आपका फोन होता है होल्ड्स मोर देन फोटोज. इट हैज योर बैंक एप्स, योर पासवर्ड्स, ओटीपीज, ईमेल्स और पर्सनल डाटा. तो लूजिंग इट ड्यूरिंग ट्रेवल कैन रूइन योर एंटायर ट्रिप. तो कहते हैं कि जो यू जस्ट हैव टू ट्रेवल स्मार्ट. अपना जो यू नो यू जो ट्रे दिया गया जाता है आपको एयरपोर्ट्स में, जहां पर आपने बिलोंगिंग्स रखते हैं, लैपटॉप निकालना है, अपने जो फोन है आपके बैग के अंदर रह सकते हैं. एंड यू डोंट हैव टू, अगर जैकेट के अंदर है, अगर जिप वाला पॉकेट है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. और आई थिंक फॉर ट्रेवलिंग ओवरसीज या बेसिकली ट्रेवलिंग अगर आप एयरपोर्ट्स जाते हैं, तो एक ऐसा स्पेशल जैकेट होना चाहिए जहां पर आपके पॉकेट में जिप हो, जहां पर आप अपने फोन रखे हुए हैं या पासपोर्ट भी रखे हुए हैं दोनों साथ में. देन यू कैन जस्ट जिप इट और ट्रे में रख दें आप. एंड बेसिकली आपको निकालना नहीं पड़ता है, जिस इज नॉट जस्ट सिटिंग लूज इन अ ट्रे. तो ये प्रोटेक्ट करता है आपकी चीजों को. और आई मीन एवरी वन you know your belongings pass through that little screening thing and goes the other side. Or itna rush hota hai us time par, sabhi apne apne cheezon ko utha rahe hote hain. And agar aapka mobile aise hi pada hai, you know, to koi bhi utha sakta hai and get access to all your personal stuff that is on your phone. To just next time maybe you're traveling, you just have to be traveling smart and thinking about these small things जो आपको परेशानी से बचा सकती है. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं.

दोस्तों, जो कि कोल्ड टाइम है, विंटर है, एंड इस टाइम पर सूप्स और स्ट्यूज जो होते हैं ये बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा है. इट कीप्स अस वार्म. और हमारे पास एक बहुत ही हाई प्रोटीन वाला सूप के रेसिपी है जो आपको देना चाहेंगे. जो मूंग का दाल है आप लें, और मसूर का दाल और तूर दाल. तो ये जो तीन दाल को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कीजिएगा. ड्राई रोस्ट करने के बाद बेसिकली इसमें आप डारे जो धनिया वाला, धनिया का सीड्स है, पाउडर्ड वाला नहीं, धनिया सीड्स डारे, ड्राई चिली और पेपर, जो गोल मिर्च, यस पेपर आप डारे, और जीरा एंड करी लीव्स. ये सब साथ में आप इसको ड्राई रोस्ट करें और फिर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर ले. तो जो करी लीव्स इज द ओनली अलाइव थिंग इन द पैन, सो यू विल जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये प्रॉपरली, तो पहले से जो दाल है वो पहले से अच्छी तरह से आपको ड्राई रोस्ट करना है. एंड देन यू पुट द धनिया एंड द ड्राई चिली एंड द पेपर एंड जीरा एंड करी लीव्स, एंड इसको अच्छी तरह से सबको भून ले. ड्राई, आपको ड्राई रोस्ट करना, कोई ऑयल नहीं डालना है. एंड कूल होने पर आपको इसको ग्राइंड करना है. ग्राइंड करके आप इसको बॉटल में धर सकते हैं. फिर जब कभी ऑन द गो, जैसे कि आपको सूप बनाना है, आप अपने प्रिय वेजिटेबल्स को लें जो आपको पसंद है. वेजिटेबल्स जो आप खाना पसंद करते हैं, हो गया कैप्सिकम या सेलरी, हो गया कैरेट्स, हो गए पीज, हो गए. और इसको आप ऑयल में, आप इसको स्टर फ्राई की तरह करके, एंड देन आप इसमें वाटर डालते हैं, एंड देन जो प्री मिक्स वाला, जो आपने अपना दाल वाला मिक्सचर बनाया है, जो पाउडर करके रखा हुआ है आपने, यू कैन पुट इन अ कपल ऑफ टेबल स्पून ऑफ दिस मिक्सचर इन जो वेजिटेबल के साथ में आपने पानी डालकर उसको बनाया है स्टोव पर, उसमें डालें और उसको हल्की से उबलने दे, सिमा होने दे. एंड देन देयर गोज योर ब्यूटिफुल सूप. और जो आप वेजिटेबल्स डालते हैं उसमें आप अपने हिसाब से, अपने जिंजर गार्लिक आप डालते हैं, थोड़ा सा अगर हल्दी डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है इसमें, तो आपके लिए अच्छा है. अगर आप हल्दी वाला नहीं लाइक करते हैं तो जाने दीजिएगा. वैसे यू कैन पुट लोड ऑफ हर्ब्स इन दैट. तो आपको जो भी हर्ब्स पसंद आता है, धनिया हो गया, मिंट, आई एम नॉट श्योर इफ इट गोज वेल विद दाल और नॉट, बट धनिया इज द परफेक्ट वन, तो आप इसको डाल सकते हैं. एंड सॉल्ट आप अपने हिसाब से, एंड देयर यू नो देयर गोज योर ब्यूटिफुल हाई प्रोटीन सूप जो आप किसी भी टाइम पर एंजॉय कर सकते हैं. और बहुत जल्दी से बन जाता है, क्योंकि अगर आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच दाल को कुक करना, फिर उसमें वेजिटेबल्स डालना, एंड देन टेक्स अ वाइल. पहले से अगर बना हुआ होता है आपका जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है मिक्सचर दाल वाला, देन इट बिकम्स इजी, बिकॉज आपको जो वेजिटेबल्स है उसको एकदम स्क्वाश नहीं करना है पकाकर, जिस लाइट एंड क्रिस्पी अगर होता है अगर सूप्स में, तो अच्छा भी लगता है. एंड यू कैन एन्जॉय इट विद एनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट यू लाइक. और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं.

दोस्तों अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच. और मिलते हैं अगले हफ्ते. टिल देन हैव अ ब्यूटिफुल डे एंड अ ब्यूटिफुल वीकेंड. नमस्कार.

यह रेडियो 79 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक इस स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो। और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह व बरकातहू। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। मैं आपको याद दिला दूं कि हर रविवार के सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें आप सुन सकते हैं सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ। और हर जुमे के दिन फ्राइडेज को आपके लिए 9 से लेकर 9:30 बजे तक महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ आप सुनते हैं जुमा बयान। और फिर 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में ओल्ड विंटेज कवाली, हमारी पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए ओल्ड विंटेज कवाली।

0: अले फिक्र में ढलता है अब मजमू मोहम्मद का।
1: अलिफ अल्लाह का है या अलिफ अल्लाह का है या कदे मौजू मोहम्मद का। अरे मुशद

0: दरबार में मसनद नशी है या इबादत में,
1: शजर में बर्ग में है वो कमर में या के जिलवत में,
0: मदीने में है वो, मदीने में है वो अरशे बरी पर या के जल

0: मुश्किल है जीना, बड़ी मुश्किल है जीना, और कुछ मुश्किल नहीं मरना। मजा तो जब है जीना और आबे इश्क में तिरना। शमा से पर जले, शमा से पर जले, लेकिन शमा पर शौक से गिरना।
1: शमा से पर जले, लेकिन शमा पर शौक से गिरना।
0: कोई

0: सगे भाई को उठकर भाई ने दरशाह फेंका था और कुएं से काफले वालों ने फिर बाहर निकाला था
1: और सुलेखा ने बराबर के जवाहर से खरीदा था
0: और वही यूसुफ थे

कुछ सोच रखते हो तो फिर इजहार हो जाओ, अगर है दागे उल्फत अंदली बेजार हो जाओ, पढ़ो और पेशवाई के लिए तैयार हो जाओ।

अली उस्मान ने बड़े धूमधाम से दौलत भी कुछ लुटा दी मोहम्मद के नाम से। रुख्सत के वक्त आपने हाजिर किए गुलाम, हैरत से मोहम्मद हुए उस्मान से हम कलाम। क्या दिल में इरादा है कहो मुझसे नेक नाम, उस्मान ने फरमाया महबूबे सुल कलाम, एक एक कदम पे आपके

शहरियत की धूल में अनवल, मोहब्बत आ नहीं सकती किसी की भूल में अनवल। उन्हीं का हुस्न है हर दीदे माकूल में अनवल।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपका साथी फिरोज खान, संगीत की जानकार, हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।